म्यूजिक MG तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।

0: को अनि पातलो भयो पुत्र मिलाएर अनि पातलो पातलो रूप है
1: ए सरे बहिनी मुखले त बाक्लो रोपे भन्दैछ नि त
2: अनि
1: मिलाएर रोप है मैले त बाक्लो रोपेको छैन के मैले के गरे कुन्नी ए बाउसी भाइ त्यो खाने खालेन
0: पानी

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन और विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: Etincin sınırın nüntil sıma durşur kadhani gay kudit narenca ko surma sızika utkrişta git sangi tharu.
1: Yo ho hamro radio 103.4 megahertz.
2: Udrak niti kina farak?
3: Fiscal को आपने रोल होंगे, monetary को आपने रोल होंगे वाला रहा, इलाज़ पे purely छुट्टियाँ ना फ़ायदे दोस्तों माला याद लाते।
2: नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष संघ खुराकानी। तारसुरुमा प्रमुख विश्व समाचार।
4: पवन राज पावडेल बाता समाचार सुनुहोस। फ्रांस की दक्षिणपंथी नेत्री मारिन लापेनले सार्वजनिक कोषको दुरूपयोग सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएको विषयमा गरिएको अपील हारेकी छन्। पेरिसको पुनरावेदन